उनसे खाया रिश्ते की होंगे ने। अज मैं माण महसूस कर रहा उस बंदे नू फोन कर दें, अगले महीने मेरे धी का विआह है, मैं चाहवागा तुसी आशीर्वाद देन जरूर है, ये मेरी सब तो वड्डी दौलत होगी, ये मेरी सब तो वड्डी कमाई होगी। शायद मेरे लिए एक बहुत वड्डी गल नहीं सी, मैं चुपचाप सब कुछ सुन रहा है बड़ी शिद्दत दे नाल। मैं शायद उस समय उदियां गल्लां दा उदी शिद्दत दा अंदाजा भी नहीं ला सकिया, क्योंकि मेरे मन दे विच तां सिर्फ इन्ना सी किसी ना किसी तरीके दे नाल साडा गेड़ा बाजे, मैं अपने दोस्त का काम कढ़ा के जावां, बाकी रब कराउण वाला पता नहीं उन्हें किहड़े तरीके दे नाल की करा दिता, की मूँह की जबानों कढ़वा दिता। मैनूं तां समझ भी नहीं आई मैं उहदे कोल रोटी क्यों मंगी सी। वो पता नहीं किहड़े तरीके दे नाल किहदी किद्दां मदद करवा दिंदा, नहीं तां मैं रोटी तो बिना भी शायद गल कर सकदा सी, हो सकदा गल करदे ही ना, हो सकदा लड़के उठ पैंदे, पर क्यों किद्दां, सारा कुछ तां उहदे हुकम च आ। जो उन्हें चाहिया जिदा चाहिया उदा हो गया, मैं कौन हुंदा मना करन वाला, मेरा विआह ते जाना तां बनदा। पता नहीं जिंदगी दे विच किद्दां किहड़े तरीके दे नाल की समीकरण बनते ने, रब तुहानूं किधरों तोड़ के किहड़े पासे नूं किद्दां लैके जांदा, कुछ अजनबी लोक मिलते ने ते तुसीं ओह उहनां दे नाल गल्लां करदे हो, उहनां नाल ओह वरतारा करदे हो जिहड़ा कदी तुसीं कदे सोचिया भी नहीं हुंदा। पर एक गल सच है, बिना उहदे कीतिआं कुछ नहीं हुंदा, कहिंदे ने पत्ता भी नहीं हिलदा। कोई दो पल किसे कोल होण, किसे दे मोढे दे उत्ते हत्थ धरन दे लई, उहनूं पुछण लई, कहिण लई, दसण लई, ते शायद तुहाडी ते उहदी जिंदगी दी दिशा ही बदल जांदी। लोगों के दिल इस टाइम बड़े सारे रूल रेगुलेशन च बजे ने, ताकत चाहते ने लोग, पैसा चाहते ने लोग, पर चाहिए तो सानू निग है, चाहिए तो सत्कार है, चाहिए तो सच्चे रिश्ते बनाउणा, पर यह सब कुछ छड़ के आपां बना रहे हैं पैसा। पैसा बनाउणा कोई गलत गल नहीं, पर इस पैसे नू कमाउण दे लई इकट्ठा करन दे लई सानू त्याग करना पैंदा, ते कई वारी ओह त्याग रिश्तियां दा हुंदा, इह बड़ा महंगा पै जांदा। जो सानू मिलिया कई वारी आपां उस दे वी अपना समझ के बह जांदे आ, इह तां है ही साडा, इह अहुदा, इह पैसा, इह तां सानू मिलना ही सी, सानू मिल गया, इस तों अगे की परे की। पर आपां इह भुल जांदे आ जो देण वाला जदों मर्जी चाहे किसी होर नूं फड़ के दे दे, चाहे अं काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जिन्ना मर्जी माण होवे सानू, पर याद रहे ये सिर्फ उहदियां लियाईयां ड्यूटियां ने, आपां सिर्फ उहदी लाई ड्यूटी निभा रहे हैं। ते जिहड़ा बंदा रोज़ ड्यूटी ते आउंदा होवे उहनूं ये चीज़ जरूर ध्यान च रखनी चाहीदी है कि मैं जिहड़ी ड्यूटी दे उत्ते हाँ, जिहड़े रब ने मैनूं इस ड्यूटी दे उत्ते लाया, कि मैं इस ड्यूटी नूं इमानदारी दे नाल कर रहा, ते जे आपां नहीं कर रहे अंदरों जवाब आवे नहीं तां फिर ओह इंपलॉयर है भाई, ओह उस बंदे नूं दऊगा जिहड़ा इहनूं होर ते तुहाडे नालों बेहतर कर सकदा होवे, ते तुसीं फिर ओह कम करोगे कल नूं जिहड़ा तुहाडी काबलीयत दे मुताबिक होवे, जो कि इस तों हल्का ही होगा। कोई नहीं चाहुंदा मेरी डिमोशन होवे, सो इस करके अपना काम भाई इमानदारी दे नाल करदे रहो। धन्नवाद सुखदीप सिंह घुम्मण जी दा जिन्हां ने कहानी साडे नाल सांझी कीती सी, लिखण वालियां दा ते इह वी कहिंदे ने नाम मैनूं नहीं पता, पर जेकर कुछ सीखण नूं मिले जिद्दां भी मिले ते उह सिख लैणा चाहीदा। आस करदे हां कि तुसीं कहानी पसंद कीती होएगी। धन्नवाद।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे चुन रहे हैं रेडियो।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: Hi, this is Richard Chanda and you're hearing me on Radio Hanchi 1674 AM.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू। नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
5: Bale bale bale.
4: Bale bale bale.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02 9063 1618, हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: thinking of building your dream home, make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry, plus a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC Supply. License 184812.
1: यार तू इतने नीचे थी आंखें पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।
1: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ IME एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
4: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई एडवाइजर।

सियाने बंदे दी सानू समझ आवे या ना आवे, जलाक बंदे दी असी अख पढ़ लेने।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: हाय हेलो, दिस इज अली असगर हियर ऑन रेडियो हाजी 1674 AM। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC Supply. License 184-812.
3: हेलो सत श्री अकाल जी,

0: फिर पाउडर है आंवला पाउडर, फिर सानू कदे भी जुकाम नहीं लगू।
1: ओके चलो फिर मैं हुण ट्राई करूंगा। थैंक यू आशीष, तुम तो बहुत बीबे पुत, तुम तो डॉक्टर बन गए। मैनु पता ही आशीष मैनु कुछ ना कुछ जरूर दसूगी, मैं ताइयो पुछा।
0: मैनु कदे कदे नोजी आउंदी बट वैसे वैसे भी
1: फिर ठीक हो जाती
2: है।
1: जो ठीक हो जाता वा फिर जाके धुप्पे रख दी ना नक ला के।
0: कदे कदे ठंड आउंदी, ठंड हुंदी फिर बोट बनाई सी, मेरी बोट फ्लोट हुई
1: बल्ले बल्ले।
0: रेनबो दैट हैज ऑल द कलर्स इन इट एंड दे वर लाइक मोर ऑफिस च दे दो जो प्राइज लेना।
1: वेरी नाइस वेरी नाइस,
2: गुड गुड।
0: इन द नेक्स्ट
1: बड़े बड़े वड्डे वड्डे काम करन लग पे तुसी ते।
2: वाह।
0: यस मैं five golden letters find kite
1: good
0: a few like questions or ask kar rahe si kite
1: very nice
0: fir sanu paper mila te ek pencil mili ta se onu tick kar sakde
1: good main na tada
0: na si finish ab wapas pencil paani
1: nice main tada naam hi recommend kar laga nama kende titanic jahaz banona oh kunda pi aa kudi ne banaundi jehdi dubda ni
2: a ohe good hai जुमांजी टीम नू भी दे दांगे ना, ट्रेजर हंट भी आंदा नू, वधिया वधिया चीजा लभदी आ जुमांजी।
1: दोबारा शुरू करो, एनर्जी नाल शुरू करी दी बोली। चक दे आशीष कौर एंड कृष्णा चक दे थैंक यू आशीष। बाय बाय बाय बाय, मैं लेट होगी। बाय बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट साढ़े नाल ने सुखन सरदार जी, सत श्री अकाल सुखन जी। हेलो डडवाल साहब, क्या हाल चाल तुहाडे? ठीक ठाक हो? आवाज पुत पहला ठीक कर लियो, तुहाडी आवाज नहीं सही आउण डई। थैंक यू जतिंदर जी, कहिंदे ने कि रिडल बुझो भाजी, कहिंदे कि मैं बिना पैरां दे तुरदा हाँ, बिना मूँह दे बोलदा हाँ, मेरे कोल शरीर नहीं फिर भी मैं तेरे नाल रहिंदा हाँ, तू मैनू फड़ नहीं सकदा पर मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, दसो कौन?
2: ये तो बढ़िया चीजें हो सकती है।
1: हाँ जी,
2: काफी चीजें।
1: चलो बुझो फिर कौन है। हाँ जी डडवाल साहब,
2: डडवाल साहब
1: हेलो
2: हेलो हेलो
1: डडवाल साहब, मेनू लगता तुम बिजी हो, मैं फिर गां बाकियां नू ले लां फिर।
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: O very good.
1: वेरी नाइस अभी साहब, क्या बात
0: ना, फिनिशर कभी कभी अंदर बैटिंग कर ले एक बार इठा है, वेरी नाइस
2: लाल जी ने ना, मैं पूछा मगर लाल जी तो सब तो ज्यादा दुख तुम तुम कदों होया दुखी ना, तुम कदों होए हो? आंदा मैं जदों दर्जी को गया, मैं देखिए मैं गया, आंदे उन्हें मेरी शक्ल वेख के पूछा भी जेबा लाउणी करांदा

0: हैप्पी बर्थडे बसंत जी.
1: आज तो बर्थडे, हैप्पी बर्थडे होगा.
2: बहुत बहुत
1: बधाई. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सैमसंग.
2: थैंक यू जी.
1: थैंक यू.

स्वागत है दोस्तों आज दी कहानी आज दे विचार दे विच। आज दी जेड़ी कहानी या विचार है ये ओशो दे एक लेक्चर्स दे विच सीगा जेड़ा तुहाडे नाल सांझा कर रहे हैं। आज दी गलबात उस सच ते आ जेड़ा असी वेखण तो डरदे आ वो सच जेड़ा साडा आ अपने आप का वह चेहरा जड़ा असी अपने आप तो लुकाया हों। गल एक कहानी नाल जुड़ती है। एक शहर दे विच एक दुकान खुलती दुकान दे उपर लिखा सीगा कि इत्थे तुसी अपनी मनपसंद बीवी लभ सकते हो जिदा की पत्नी तुहानू चाहिए है। उत्थे एक नौजवान मुंडा जांदा जदों दुकान दे अंदर जांदा तो उत्थे दो दरवाजे होंदे ने। जदों बिंदा ते बड़ी दुचित्ती दे विच आउंदा कि मैं तां एक चीज़ ले आया सी इत्थे दो दरवाजे ने। एक दरवाजे ते लिखिया हुंदा सी जवान दूजे दरवाजे ते लिखिया सीगा वड्डी उमर वाली। सो जिस ते लिखा होंदा ही जवान घर वाली उह दरवाजा खोलदा। जो दरवाजा खोलदा तो बड़ा हैरान होंदा अंदर तो कुछ भी नहीं पर हाँ होर दो दरवाजे जरूर होंदे ने। एक दरवाजे ते लिखा होंदा बड़ी सोहनी एक ते लिखा होंदा बड़ी साधारण आम जी। फिर वो जिते लिखा होंदा बड़ी सोहनी वो दरवाजा खोलदा बड़े चा चा नाल। अगे फिर दो दरवाजे होंदे ने। एक ते लिखा होंदा चंगा खाना बनाउण वाली एक ते लिखा होंदा जिन्हों खाना नहीं बनाउणा आउंदा। सोहनी भी उही कीता जो तुसी ते मैं करते उन्हें पहला दरवाजा खोलिया चंगा खाना बनाउण वाली पत्नी। हैरानी की हद तो उदों हुंदी है जदों अगे दो दरवाजे होर हुंदे ने। एक ते लिखा हुंदा दहेज लियाउण वाली एक ते लिखा सी ना दहेज लियाउण वाली। चलो वो दरवाजा खोलदा जिस ते लिखा हुंदा दहेज लियाउण वाली पर इस वारी अगे दो दरवाजे नहीं सी। इस वारी अगे सी एक शीशा जिस ते लिखा सी कि तुसी बड़े गुणा दे इच्छुक हो उस तो पहला अपना मूँह देखो इच्छावां जिहड़ियां नित नवें दरवाजे खलाउंदियां ने। एक इच्छा चो दूजी इच्छा निकलदी है ते नवें दरवाजे खोलण लई मजबूर करदियां। इच्छावां दे चक्कर च नवें दरवाजे खोलण दे चक्कर च असीं अपना चेहरा वेखणा ही भुल जांदे आं। एक इच्छा चो दूजी कोई इच्छा निकली एक दरवाजा खोलिया उतों कोई होर दरवाजा खोलिया तो दरवाजे खोलते ही गए। फिर सपना वेख्या हरेक दरवाजा खोलन तो पहला हरेक इच्छा तो पहला पर अखीर नू खाली रहे। अपने आप नू पहचानिया जावे जो अपने आप नू पहचानदा वह संसार तो कुछ नहीं मंगदा क्योंकि संसार कोल कुछ हैगा ही नहीं मंगण लई। ते जो अपने आप नू पहचान लैंदा उहनू वह सब मिल जांदा जो उहने मंगिया सी जो उहने नहीं मंगिया। ते जिहड़ा मंगदा ही रहिंदा दरवाजे खोलदा रहिंदा इच्छा ते इच्छा रखदा ही रहिंदा उहनू शायद ही थोड़ा थोड़ा करके कदी कदी मिल जाता हो बहुती बार तो मिलता भी नहीं। यह गल शीशियां दरवाजियां ते इच्छावां तक सीमित नहीं सीमित होनी साढ़े सबर ते साढ़े संतोख ते नहीं तो वाधी उम्र के नाल अपरचुनिटियां का घाटा थोड़ी है।
ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਇੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ, ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਸਰਜੂ। ਆਓ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਚੋਂ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02 9063 1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी
1: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
2: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
1: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: You are listening
1: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
1: Radio Haji
2: Stay tuned।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: मार दे रही तू।
1: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।
2: आज प्यार की हो डील,
3: डील बोले तो
4: हार्ट हार्ट
5: हमारा यार, सौदा सौदा।
4: ओहो,
2: दोनों डील कर
4: टाइट, वेरी टाइट।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: खातर नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
1: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी हां जी हां जी
1: हां जी हां जी रेडियो हां जी रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी, आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: नाहे आपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर ना रखन हार नानक संत भावे तन ले उबार
0: संत का दुखी ओं बिल लाए जो जल बिहोन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा जो पावक इधर नहीं त्रापे
0: संत का दुखी छुटाए की ला जो बुआर तिल खेत माहे बहिला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिठिया कहत
0: कीर्तन निंद का तुर ही पाया नानक जो तिस पावे सोई थे
1: संत का दुखी बिगरूप हो जाए संत के दुखी को दरगाह मिला सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी मां नाम रहना जीवाई है
1: संत के दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत के दुख ना तृष्णा कोई जैसा पावे तैसा कोई होए
1: पया कितन मेटा कोई नानक जाने सच्चा सोए
0: सब कर तिसके ओहो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार
1: सब की उस्तत करो दिन रात तिसे त्या वो सास गिरा
0: सब कछ वर्त है तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेल अब करने हार दूसर कौन कहे विचार
0: जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़पागी नानक जन से
1: सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम पग जना कै मन विश्राम अट तेरा श्लोक
0: तजो सियान पसुरजन हो सिमरो हर हर राए एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पौ जाए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: मन की टेक विधि सब जान देवन को एक है भगवान
0: जिस कह दिया रह अगाए बहुर न तृष्णा लागे आए
1: मारे राखे एक आप मन कै कुछ नाही हा
0: तिसका हुक्म बूढ़ सो खोए तिसका नाम रख कंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए
0: उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो
0: नैनो पिव ठाकुर कारंग साध संग बिन सह सब संग
1: चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद
0: हर हर कर्म सर्वन हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा
1: वडबागी ते जन जग माहे सदा सदा हर की गुण गाहे
0: राम नाम जो कर है बीचार से धनवंत गनी संसार
1: मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी
0: एको एक एक पछान है इतुत की हो सूझी जाने
1: नाम संग जिसका मन माने नानक तिन निरंजन जाने
0: गुर प्रसाद अपना आप सूझे तिसकी जानो तृष्णा बुझे
1: सा संग हर हर जस कह तू सर्व रोग त्यो हर जन है तू
0: अंदर कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जम की फासा
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लागह दुख
1: जिसको हर पर मंचित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे
0: जिस पर अपना कृपा कर सो सेव कहो किसते डर है
1: जैसा सत तैसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया
0: सोदत सोदत सोद सीजा गुर प्रसाद तत सा बूझिया
1: जब देखो त सब किछ मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल
0: नह किछ जन्म है नह किछ मर है आपन चलित आप ही कर है
1: आवन जावन दिष्ट अनदिष्ट आज्ञाकारी तारी सब शिष्ट
0: आपे आप सगल मह आप अनक जुगत राज थापो थाप
1: अविनाशी नाही किछ खंड तारन धार रहो ब्रह्मांड
0: अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप
1: जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरे तनमंत
0: प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारन
1: आपे मेल लय कृपाल गुर का सजो पै निहाल
0: उनकी सेवा सोई लागै जिसनो कृपा करह बड़ भागै
1: नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को तुम कर मान
0: जो किछ करै सो प्रभु कै रंग सदा सदा बसै हर संग
1: सह सुभा होवे सो होए करने हार पछाणै सोए
0: प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सत ऐसा दृष्टाना
1: जिस ते उपजे तिस महे सुमाए ओए निधान ओए सुख निदान उन्हु बनाए
0: आपस को आप दीनो मान नानक प्रभु जन एको जान
1: सुख मनि सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ चौदह श्लोक
0: सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जानन हार जा कै स्मरण उदरी है नानक तिस बलिहार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: टूटी गंडन हार गोपाल सर्व जी आपे प्रतपाल
0: सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे
1: रे मन मेरे सदा हर जाप अवनाशी प्रभा पे आप
0: आपन की आ कछु न होए जी सौ प्राणी लोचै कोए
1: तिस बिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम
0: रूपवंत होए नाही मोह है प्रभु की जोत सगल घट सो है
1: तनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब की तिसका दिया दरब है
0: अत सूरा जे को कहावै प्रभु की कला बिना कहतावै
1: जे को होए बहे दातार तिस दिन हार जाने गवार
0: जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग नानक सो जन सदा अरोग
1: ज्यो मंदिर को था मैं थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन
0: ज्यो पाखाण नाव चढ़ता रह प्राणी गुर चरण लागत निस्तार है
1: ज्यो अंत का दीप प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास
0: ज्यो महाउद्यान मह मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै
1: इन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर
0: मन मूर्ख काहे बिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए
1: दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्या तू तसै चितार
0: जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरै अजान
1: कौन बसताई तेरे संग लपट रहो रस डूबी पतंग
0: राम नाम जा फिर दे माहे नानक पद सेती कर जाहे
1: जिस वकर को लेन तू आया राम नाम संतन घर पाया
0: ताजब मान लेहो मन मूल राम नाम हृदय महतोल
1: लाद खेप संत संचाल अवर त्या विखिया जंजाल
0: धन धन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए
1: हो वापार विरला वापार है नानकता कै सद बलिहार है
0: चरण साध के धोए धोए पियो

0: श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धरके खालसा जी साध संगत बोलना जी।
1: श्री वाहेगुरु।
0: हे अकाल पुरख अंतर्यामी श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह जी, आप जी दी मेहर दा सदका श्री सुखमनी साहब जी दा पाठ संपूर्ण होया है। सब तरह करके मेहर करनी श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला ते भाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। सब जो

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका स्वागत। जिंदगी साथ तय करते करते ऐसे लगता है कि हमारा और आपका एक परिवार बन गया है। ऐसे में कोई मुश्किल आपकी जिंदगी में आती है या कभी ऐसा लगता है कि कोई अड़चन है तो फिर हमारे लिए भी वो परेशानी का सबब बन जाती है और साथ मिलकर इस ज्ञान को जिसे हमने जान लिया है उसके आधार पर उसका सोल्यूशन उसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से उसे दूर किया जा सकता है। अगर हम देखें तो इस जीवन में हमारी बहुत सी ऐसी आदतें हैं, कई आदतें अच्छी होती हैं और कई आदतें इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि हमारी मजबूरी बन सकती है। अगर वो आदत हमें ना भी हो तो हमारे किसी अपने की वो आदत हो सकती है जिसे हम दूर करना चाहते हैं ताकि वो मजबूरी ना बन जाए। आने वाली कुछ कड़ियों में हम इन्हीं आदतों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये आदत जब हमारी मजबूरी बन जाती है तो उसे क्या हम दूर कर सकते हैं और किस तरह से ज्ञान हमारी मदद कर सकता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: और हर बार की तरह हमारी हम सफर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, आपसे शुरुआत करते हैं बातचीत का कि जब हम आम जिंदगी जी रहे हैं कई चीजों की हमें आदत पड़ जाती है क्योंकि हर रोज करते करते दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाती है, तो लेकिन देखा गया है कि कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उन आदतों को हमारी मजबूरी हम मान लेते हैं कि उनके बिना हमारा काम ही नहीं चल पा रहा होता, तो तब हमें परेशानी लगती है। अगर हम इन आदतों के बारे में सचमुच में जानने की कोशिश करें तो कौन सी हैं वो आदतें जो हमारी मजबूरी में बदल सकती हैं?
1: मूल रूप से जो आप बात कर रहे हैं उसमें जब आमतौर पर हम सोचते हैं मनोविज्ञान के विषय में जब सोचते हैं तो अधिकतर एडिक्शन है, व्यसन है कि कोई व्यक्ति अगर थोड़े दिन भी शराब पीने लगता है और फिर एक दिन शराब न पिए तो उसे जो तकलीफ होती है ना, उसको हम आमतौर पर एडिक्शन कहेंगे। जैसे ड्रग्स भी है, बहुत सारे ड्रग्स है कि जिसकी भी एक मजबूरी हो जाती है, परंतु छोटी छोटी बातें भी,
0: इवन स्मोकिंग निकोटीन का जो है उसे भी व्यसन माने। ये मोटे मोटे तौर पर है, अगर हम सूक्ष्म कहते हैं,
1: सूक्ष्म बातों पर अगर हम सोचे तो चॉकलेट्स खाने की आदत हो सकती है। आज कहीं है नहीं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार कहा था कि भी भोजन के बाद मैं मीठा नहीं खाऊं तो मुझे नहीं चलता है। भी रोज रात्रि के भोजन के बाद कोई मीठी डिश खाने की इच्छा होती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वह भी एक प्रकार से देखो तो एडिक्शन। ऐसे और बातें भी हो सकती है, जैसे कि किसी को गुस्सा करने की आदत हो जाती है, छोटी सी बात को लेकर के भी वो गुस्से में आ जाते हैं, या तो दे वुड नो स्टार्ट फाइटिंग। आज यूथ में देखो, बच्चों में देखो, तो छोटा सा कारण देख करके भी दे विल इनिशिएट फाइटिंग। व्हेन आई हैड सिमिलर थिंग व्हेन आई वाज स्मॉल, तो अभी जब बड़ा हुआ सोचने लगा, मनोविज्ञान को पढ़ा तो इसके बारे में सोचने लगा तो पता चला कि सचमुच देयर वाज समथिंग रॉन्ग। और बच्चों की गलती नहीं होती थी, स्टिल आई विल इनिशिएट फाइट एंड एंजॉय इट।
0: अच्छा, एंगर को एंजॉय करने लगते हैं। एक्चुअली वही है एडिक्शन, जब हम एंजॉय करने लग जाए तो, या कोई भी आदत हम एंजॉय करने लग जाएं जो नेगेटिव है, वो एडिक्शन बन जाती है।
1: हाँ, वो मतलब एडिक्शन की शुरुआत हुई है। और भी अगर आगे बढ़े और वो बात ना हो और फिर अगर आपको तकलीफ होती है, हाँ, अंदर में आप अनकंफर्टेबल फील होते हैं, सर भारी हो गया और कई बातें भी, तो सचमुच कहेंगे कि एडिक्शन।
0: बिल्कुल डॉक्टर पटेल, जिस तरह से आपने कहा, बहुत ही सुंदर आपने बात कही कि कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर ही देखना पड़ेगा, कई ऐसी आदतें हैं जो हमारी एडिक्शन बन सकती हैं। स्पिरिचुअली अगर हम देखें, सिस्टर शिवानी, जिंदगी जीते हुए आज हम जिस अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं, एक्चुअली ये आदत जब व्यसन की तरफ या मजबूरी की तरफ बढ़ रही होती है, व्हाट एक्चुअली हैपन्स इनसाइड अस?
2: आई थिंक थिंकिंग, क्योंकि हमने देखा कि आदतें कैसे बनती हैं। हम एक थॉट क्रिएट करते हैं जो एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। हमने एक संकल्प क्रिएट किया, बुद्धि उसको परखती है, निर्णय देती है और फिर वो एक्शन में आता है, और जो एक्शन में आ गया वो एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है, और बार बार जब अब वो हमने कर्म किया तो वो एक संस्कार बन जाता है। अब कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है कि हम इतनी बार वो कर्म को रिपीट करते हैं, वो हमारे संस्कार इतना डीप रूटेड हो जाता है कि इंटेलेक्ट उस पर अपनी जजमेंट देना बंद कर देती है। तो इट्स लाइक अ गेट जिसको हम बाईपास कर जाते हैं कि थॉट आया, इंटेलेक्ट ने उस पर अपना डिसीशन नहीं दिया कि ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि इंटेलेक्ट ने कई बार डिसीशन दिया था लेकिन हमने उसको बाईपास कर दिया। तो अब वो जिसको हम कहते हैं कि वो आवाज जो अंदर से आती थी वो आनी बंद हो गई, बट इट्स बेसिकली वो विवेक, वो अब काम नहीं कर रहा। तो थॉट क्रिएट हुआ और सीधा कर्म में आ गया। एंड फिर वापस उसका इम्प्रेशन पड़ गया, तो ये एक बहुत डीप रूटेड साइकिल चलता जाता है,
3: विशेष करके जिसे हम कहते हैं जहां कहीं ना कहीं हमारी विल पावर जो है, विल पावर
1: शिवानी बन कर ना, शी माइट आल्सो एग्री कि संस्कार बुद्धि को सप्रेस भी करते, या तो कहेंगे कि उसको मोटिवेट करते कि यही करो, जैसे चॉकलेट खाने की आदत की बात कही, तो अगर संस्कार हो गए तो वो संस्कार उसे अफेक्ट करेंगे, कहेंगे पुल करेंगे या पुश करेंगे,
3: इंस्पायर करेंगे,
1: चॉकलेट
3: देखते ही चॉकलेट अगर दिख भी नहीं रही तब भी याद आएगी,
1: तब भी याद आएगी, और थोड़ा भी क्लूज भी मिल जाए, कहीं रैपर भी दिख गया चॉकलेट्स का, उसे याद आ जाएगा कि मुझे चॉकलेट्स खानी है,
3: एंड देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर इट।
1: हां, इवन बुद्धि भी, एक बार अगर ये हुआ आपने किया तो बुद्धि को भी उसी प्रकार का जजमेंट लेने की, बुद्धि है ना वेइंग स्केल जैसी है जिससे हम माप करते हैं भी कितना वजन है, तो बुद्धि फिर जो वे करती है ना वो भी नेगेटिवली करेगी। फॉर एग्जांपल कि मुझे आदत हो गई कैडबरीज खाने की, तो भले मेरा वेट बढ़ रहा है, तो एक प्रकार से तो बुद्धि में कि भी वेट बढ़ रहा है, मैं कैडबरीज खाऊंगा वेट और बढ़ेगा, परंतु तब अगर ये आदत हो गई है तो बुद्धि कहती नहीं नहीं खा लो, और चीजें सोचेगी कि अरे इससे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ये ज्ञान बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मा कुमारीज में भी जब मैंने इनिशिएशन लिया तो ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी, जो सारा खेल है वह है मन बुद्धि और संस्कार का खेल, अगर तीनों को ठीक से आपने मैनेज नहीं किया तो इसे बहुत सारी चीजें जो मजबूरी में परिवर्तन हो जाएगी।
0: डॉक्टर पटेल, अगर हमने अभी मोटे मोटे तौर पर हमने बात की है कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो व्यसन का या मजबूरी का या एडिक्शन का रूप ले सकती हैं, अगर और डीप में जाएं तो क्या क्या चीजें और हो सकती हैं? चॉकलेट की कैसी बात, क्योंकि अभी तक हम जनरली ये सोचते थे कि स्मोकिंग, निकोटीन का जो इनटेक है, स्निफिंग करना या ड्रग्स, ड्रिंक्स या इवन गुटखा, यही है जो क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, यू नो फिजिकली कर रही हैं, तो वही है जो एडिक्शन है। आगे इसके डीप और हमारी जिंदगी में भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एडिक्शन का रूप ले सकती हैं।
1: और जैसे सिंपल सी चीजें जिसे हम आमतौर पर एडिक्शन नहीं मानते हैं, वह है चाय कॉफी। आज कॉफी को तो मेडिकल साइंस में भी बोलना है कि उसके फायदे हैं, टीज के बेनिफिट्स भी डिस्कस करने लगे, बट मैं सोचता हूँ कि भी थोड़ा सा तो ठीक है, परंतु ये कंपनीज ज्यादा मोटिवेट करती है, जो रिसर्च आ रही है ना अधिकतर उसे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से ये माइंड सेट होता है कि मैम ये प्रूव करना है कि भी कैफीन अच्छा है,
0: रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो हमें जा रही है, बिल्कुल,
1: क्योंकि जो कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करनी है इसके लिए अधिकतर वो रिसर्च देते हैं, अदरवाइज इट्स अ प्रूवन फैक्ट उसकी आदत होती है।
0: इनफैक्ट ये बिना सोचे ही हम वो कॉफी का कप उठा लेते हैं, चाय का कप उठा लेते हैं और पीने लगते हैं,
1: और अगर नहीं मिला तो
0: सर में दर्द,
1: एक घंटा भी नहीं हुआ सर दर्द, पाल्पिटेशन होने लगेगा, यू विल फील अनकंफर्टेबल, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और हार्मफुल इफेक्ट्स आर नोन टू एन एक्सटेंड एटलीस्ट, कि भी वो एसिडिटी क्रिएट करेगी, एक स्पिंक्टर होता है इसोफेगस और पेट के बीच में एक द्वार है जिसको लूज कर देती है, तो एसिड आएगा और रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस होगा जिसको आमतौर पर हम एसिडिटी कहते हैं। आज बच्चों में भी गुटखा सिंपल चीज नहीं है, आज आमतौर पर यही सोचते हैं कि भी सरल सी चीज है, उससे थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, अच्छा लगता है, परंतु कॉलेज के विद्यार्थियों में ऑलमोस्ट 70% है उनको इसका व्यसन हो।
0: डॉक्टर पटेल, एक और एस्पेक्ट हम बात करना चाहते हैं कि ये तो हमने फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं सारे, कि ये जो छोटी छोटी चीजें जो हमारी आदतें पड़ चुकी हैं, आजकल ये देखा गया है टेलीविजन की एडिक्शन है, कंप्यूटर्स की एडिक्शन है, और वो भी अब वो एडिक्शन है या क्योंकि वो कंटिन्यूस बैठे रहते हैं, अगर कंप्यूटर नहीं कर पा रहे तब मुश्किल है, टेलीविजन के वो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स नहीं देख पा रहे तब भी, मैंने देखा है कि विमेन जो सीरियल देखती हैं अगर एक एपिसोड छूट जाता है तो देर इज अ हेडेक, तो ये भी सारे क्या एडिक्शन में
1: है? बिल्कुल, अभी दो दिन पहले ही एक नौजवान था जो मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं कंप्यूटर पर काम करता हूं तब तक मुझे अच्छा लगता है, अगर कोई मुझे और कोई काम दे दे कि ऑल ऑफिस वर्क करो तो मुझे चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो दिस इज एडिक्शन। इनफैक्ट सिर्फ इंटरनेट का ही, इंटरनेट का एडिक्शन तो बहुत कॉमन है कि सारा दिन इंटरनेट पर सर्फिंग करते रहेंगे, अगर थोड़ा भी उन्हें मौका नहीं मिला तो सर दर्द हो जाएगा, इरिटेशन होगी, नींद नहीं आएगी।
0: सिस्टर शिवानी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस, जब हम बात कर रहे हैं जागरण की आज, तो अब ये सारी बातें अगर हम बात देखें तो चॉकलेट खाना तो मैं मान ही लेती हूँ कि ये आदत है मेरी, मुझे अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ, लेकिन क्या मैं ये समझ सकती हूँ, कैसे मैं ये जानूं कि मेरी जो आदत है ये मेरी मजबूरी बनती जा रही है? हाउ कैन आई डू इट विद अवेयरनेस?
2: जिस क्षण हमें ये लगने लगे कि इसके बिना अब हम रह नहीं सकते,
3: सर में दर्द हो रहा है या कोई फिजिकल,
2: नहीं इवन इंटरनली यू नो वो खींचती है वो चीज मुझे, फिजिकल मैनिफेस्टेशन उसका सर दर्द या बॉडी में जो भी परिवर्तन आए वो तो फिर दूर की बात, लेकिन संकल्प मेरा जिस तरफ जाता है, अगर जैसे कंप्यूटर का एडिक्शन है, अब दूसरा काम करने बैठे हैं लेकिन थॉट इज गोइंग बैक टू द कंप्यूटर, तो एडिक्शन पहले तो संकल्प लेवल पर आएगी ना, तो हम कर एक चीज रहे हैं लेकिन माइंड उस पर न कॉन्सेंट्रेट होकर दूसरी चीज की तरफ वापस खींचता हुआ जा रहा है, जब तक मुझे वो चीज नहीं मिल जाती, सपोज चाय या जो भी चीज इस तरह से जो लैकिंग है, तो जब तक वो नहीं मिलेगा माइंड उस तरफ ही खिंचता जाएगा, सो आई कम टू नो यू नो आई एम अडिक्टेड टू समथिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू।
4: अपनी टोयोटा चूज कर ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
5: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा The Smart Choice।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। Thank you.

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: Oh,

0: साल दे हो गए हो तुसी भाई, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मौजा माणो, बेस्ट एज टू बी, वेरी वेरी वेरी मुबारकबाद, एंड मुबारकबाद टू पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो, बहुत बहुत मुबारक,
1: बहुत बहुत बधाइयां जी, बहुत बहुत बधाइयां। ते नेक्स्ट साडे नाल ने BSANTI Sammy साहब,
2: प्रीमियम सब्सक्रिप्शन
0: चलो
1: लाल जी नू, लाल जी लै लेने फिर बाद चलो बाद। हैलो लाल जी, की हाल चाल ने तुहाडे? SCMHI बसंत लाल
3: Happy birthday to you. वाह वाह वाह, ऑस्ट्रेलिया दी मिट्टी दा लाल, साडा अपना प्रिय, साडा सारे दा रखन वाला खुशहाल बसंत लाल, बहुत बहुत जन्मदिन दी मुबारक।
1: मल्लियां च जमी जनरेशन आ,
3: अच्छा,
1: जेडी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू ते आप भी कह रही हुंदी हैप्पी बर्थडे टू यू,
3: सेम टू यू जी, सेम टू यू।
4: मेरे बर्थडे वारी जेड़ा बंदा गोरा जेड़ा अंग्रेजी गाने गांदा बर्थडे विश कर दिंदा ओनू हे फिवर हो जांदा।
1: काले पै जांदे हो तुसीं, हल्की तां दुनिया कदों मुकनी है, तुसीं पहला ही आबे ही आप पीना चाहुंदे जे।
3: आ ठीक सी।
1: कमाल मालक किड्डे कर्म वाले हाथ है जेडे, वेख लो सवेरे सवेरे सारिया दे रोटी पा रहे हैं।
3: वाह क्या बात है, है? पाजी कितना अच्छा परस्पेक्टिव चेंज कर देंगे, बड़ा निरूपर आए टाइप बनाता था बसंत जी एक सेकंड के अंदर ही कर्मा वाले हाथ है, क्या बात है।
4: ये बंदे बड़े पॉजिटिव होते हैं, बहुत बढ़िया। ये बंदा ना जुतियां की दुकान दे अंदर शोरूम के
1: तो उसे बूट बना देता है,
4: जुतियां बड़ी महंगी है ना, भाई कहना भाई तेरे किन्ने जोड़े टोटल, कहता जी 300 होने दुकान से, कहता कट दो सारे, कहता ढेर ला दो, ढेर ला दे, कहता जी 500 किलो खे लिए।
1: अरे तुम दसो भी कुत्ता किदा सौंदा, कुत्ता किदा सौंदा
0: अपने
1: घर रहा कि टोर ना सौगा हां पिछली पिछली राइट लत उते चुक के टोर ना सौगा
0: लाइफ है ये लाइफ दीवाना बना देंगे आपको
1: तुम लत ते लत धर के अपने आप नू किते उदां दा ते नहीं इमेजिन कर रहे सेवन अप दी एड वर्गा
0: गॉडफादर ऑफ सेवन अप है निवाल फिर उधर नहीं है ना वाल भी उधर ही चाहिए ना स्पाइक जे जेजबी से
1: बना लेंगे वक्रे वक्रे बना लेंगे
0: एक गल सही है
1: ठीक है आ लाल जी फिर तो डेली सॉन्ग

0: O very good. वेरी नाइस अमित साहब, क्या बात
1: ना, फिनिशर कदी कदी आंदा बैटिंग कर ले एक बार इठा है, वेरी नाइस।
2: लाल जी ने ना, मैं पूछा मगर लाल जी तो सब तो ज्यादा दुख तुम कद तुम कदों आए दुखी ना, तुम कदों आए हो? आंदा मैं जदों दर्जी हो गया, मैं देखिए मैं गया, आंदे उन्हें मेरी शक्ल वेख के पूछा भी जेबा लाउणी करांदा।

0: हैप्पी बर्थडे बसंत जी,
1: आज तो बर्थडे, हैप्पी बर्थडे होगा, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सैमसंग,
2: थैंक यू जी, थैंक यू
1: जी, थैंक यू।

0: चलो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: फुलकारी उत्ते बेल बूटियां मित्रां दे चादरे ते पादे मोरनी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल ते तुसी सुन रहे हो हां जी रेडियो।

0: हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
1: हाँ जी रेडियो।
2: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 ते 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बोथ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
1: मोटे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सोखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।